0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब

0: आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
0: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्जेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
1: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
1: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
0: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत ये परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मधुरांतक में 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजी नगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
2: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यह एक वास्तविकता है।
3: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई हैं।
4: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक कोड है और उसमें यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ।
2: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
5: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों को सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
1: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्जेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हाल्जेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मिथ मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inks 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam, results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hudson wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of five-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning, briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
7: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8%
8: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8% द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज आल्सो कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइंस वाटरवेज पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड एंड इंटीग्रेटेड Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
7: एक integrated transport and logistics authority का निर्माण किया जाएगा.
6: Mr. Vaishnav said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises.
7: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का
8: 10,000 करोड़ रुपीस एमएसएमई ग्रोथ फंड विल बी एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल टू एमएसएमईज विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल द फंड विल बी ऑपरेटेड विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड विल बी प्रोफेशनली मैनेज्ड टू इंश्योर इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ कैपिटल द फंड विल प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड एमएसएमईज विद नियरली हाफ ऑफ इट्स कॉर्पस एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिस फोकस एम्स टू सपोर्ट एमएसएमईज इन Leveraging the significant growth opportunities emerging in the sector.
7: Manufacturing se related MSMEs, jinke liye bahut badi opportunities abhi aa rahi hai.
6: Prime Minister Narendra Modi in a social media post said, this cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. He added that the Integrated Transport and Logistics Authority approved by the cabinet will bring greater coordination, data-led planning and multimodal integration across India's transport ecosystem. Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi stated this while interacting with Global System for Mobile Communications Association board members at Seva Teeth today ahead of the India Mobile Congress. The India Mobile Congress is scheduled to be held from 7th to 10th of this month in New Delhi. He emphasized the need to make technology and digital services affordable and accessible, particularly for the Global South, and highlighted the importance of taking technology to the last mile to prevent a widening digital divide. The Ministry of Defence has signed a contract worth over 660 crore rupees with BrahMos Aerospace Private Limited for procurement of BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was inked in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. With a minimum of 68% of indigenous content, the project encourages active participation of various Indian industries, including MSMEs. The BrahMos system, fitted on board various frontline warships, is the Indian Navy's primary surface-to-surface missile system for maritime strike operations. It will bolster India's maritime security architecture and defense capabilities. The Defense Research and Development Organization, DRDO, today conducted a successful flight trial of the indigenously developed high-altitude platform. On its successful flight trial, Defense Minister Rajnath Singh congratulated the team, saying it is an important milestone in India's Atmanirbhar Bharat journey towards realizing a long-endurance stratospheric airship. This is Akashwani giving you the news. For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel, Akashwani News. The Union Cabinet today passed a resolution congratulating Prime Minister Narendra Modi for completing 25 years as the head of government. Mr. Modi first became the Chief Minister of Gujarat on 7th of October 2001. He went on to become the Prime Minister in 2014, and tomorrow he will complete 25 years at the helm of government. Addressing the media after the cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, Prime Minister Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy.
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं
8: ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कंप्लीटिंग 25 इयर्स एज द हेड ऑफ अ गवर्नमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंटिन्यूड सर्विस टू द नेशन द कैबिनेट कांग्रेचुलेटेड हिम एंड पास द रेजोल्यूशन ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन गुजरात द प्राइम मिनिस्टर ब्रॉट अबाउट सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस थ्रू हिज वर्क्स एंड पॉलिसीज फॉर व्हिच ही वाज ऑनर्ड अराउंड द वर्ल्ड द इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय हिम लेटर बिकम इंपॉर्टेंट टेम्पलेट फॉर द कंट्री दस द गुजरात मॉडल गेन रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन ग्लोबली and several of its successful approaches were subsequently implemented across India.
9: Aur Bharat bhar mein uski implementation hui.
6: Prime Minister Modi's 25-year journey in public service has been defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the UPI.
10: India's digital payments ecosystem has undergone a remarkable transformation. It is driven by the vision of creating a simple and secure payment system accessible to every citizen. The Unified Payments Interface, UPI, developed by the National Payments Corporation of India, has emerged as a cornerstone of India's digital payments revolution. Today, UPI is now accepted in 11 countries, with Greece and the Maldives being the latest to adopt India's real-time payment platform. Addressing the Global FinTech Fest 2026, Prime Minister Narendra Modi highlighted that UPI is no longer confined to domestic borders.
3: UPI ab sirf Bharat tak simit nahi hai. Kuch varsh pehle yahan koi kehta ki videsh mein bhi Bharat ke bank account se payment kar dega, to shayad hi koi vishwas karta. Lekin aaj yeh ek haqeeqat hai. Bharat ka UPI ab duniya ke 11 deshon mein live hai.
10: UPI was launched on 25th August in 2016, and in just a decade, UPI has transformed the scale of digital payments in the country, making transactions faster, simpler, and more accessible. Talking to Akashwani News, Saranyam Singh, a resident of Patna, said he used to check if he had enough cash in his wallet before stepping out, but now he easily pays for tea, auto rides, groceries or meals in seconds by using UPI.
11: There was a time when stepping out meant checking whether I had enough cash in my wallet. Today, that routine has completely changed. I can pay for a cup of tea, an auto ride, groceries or a meal within seconds. I can split a bill with a friend or send money to someone instantly without carrying cash or looking for an ATM.
10: As of 2025, UPI accounts nearly 49% of the world's real-time payment transaction volume. Today, UPI is not just a payment system, but a people's platform that made financial transactions faster, simpler, transparent and inclusive. With Aman Yadav, Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
6: India has strongly condemned the attacks on commercial vessels in the Black Sea and the Strait of Hormuz, in which two foreign seafarers were killed and several crew members, including Indian nationals, were injured. New Delhi has called for an immediate end to attacks on commercial shipping and urged dialogue and diplomacy to restore safe navigation through international waterways. The government has appointed Air Marshal Ashutosh Dixit as the 29th Chief of the Air Staff in the rank of Air Chief Marshal with effect from the afternoon of 31st of this month. He will succeed Air Chief Marshal Amarpreet Singh. Voting concluded peacefully for by-elections to five assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with the Lok Sabha seat in Assam. Polling took place for Madurantakam and Dharapuram seats in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. Voting was also held for Nagaon Lok Sabha seat in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. The assembly seats fell vacant following the resignation of the sitting legislators, while the Nagaon Lok Sabha seat was vacated after the resignation of Congress leader Pradyut Bodoloi. Senior BJP leader and Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has criticised Congress Party and Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi for repeatedly targeting Election Commission of India and other constitutional bodies. Talking to the media in New Delhi today, Mr. Rijiju said political parties should serve the people and accept the electoral mandate.
5: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं
12: एवरी डे द ड्रामा दैट राहुल गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी कीप क्रिएटिंग ओवर द इलेक्शन कमीशन एंड द रिपीटेड अटैक्स दे मेक ऑन द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू स्टॉप नाउ इन अ डेमोक्रेसी इफ यू सर्व द पीपल यू विल रिसीव द मैंडेट इफ यू फेल टू गेट द पीपल्स मैंडेट एंड देन अब्यूज द इलेक्शन कमीशन दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड
5: और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे.
6: Earlier in the day, opposition parties held a protest march from Parliament House to Nirvachan Sadan, the headquarters of the Election Commission of India in the national capital, over alleged irregularities in the special intensive revision process and demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. However, security personnel stopped the protesters near Akashwani Bhavan as they headed towards the Election Commission. Later, Leader of the Opposition in the Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi, along with Party Leader Priyanka Gandhi Vadra and other supporters, entered Akashwani Bhavan and staged a protest on the premises. Delhi police detained them in the evening. Briefing media in New Delhi this afternoon, BJP spokesperson Dr. Sudhanshu Trivedi said the Congress First family, which for the past four generations ran a monarchical rule by strangling democracy, attempted to intrude into Akashwani today under the guise of democracy. He said Rahul Gandhi is engaged in misleading the entire nation with baseless, incoherent and false statements. The Nobel Prize in Physics 2026 has been awarded to Belgian-born scientist Francis Hansen, who turned an enormous block of ice at the South Pole into a detector for ghostly particles called neutrinos that reach Earth from outer space. Making the announcement, the Nobel Committee today said 82-year-old Professor Hansen, a particle physicist at the University of Wisconsin-Madison in United States, won the prize for decisive contributions to the Ice Cube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. He received a prize of $1.2 million. The U.S. House of Representatives has introduced a bipartisan resolution honoring Indian pilot Smit Machar, the crew and passengers of Fly Dubai Flight 1073 for their actions during an alleged cockpit attack. With regard to the today's opposition's protest, the Election Commission has clarified that no political party had sought an appointment till 4 p.m. to meet the Commission through its representatives. In a press statement, the Commission said that, however, at around 4 p.m., it received information from the Delhi police that a delegation of members of Parliament, led by Leader of the Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi, want to meet the Commission and submit a memorandum. In men's cricket, West Indies have set a target of 172 runs for host Indian first T20 of five-match series in Lucknow. In reply, India were 35 for 2 in 3.3 overs when reports last came in. Earlier put into bat, the visitors were bowled out for 171 runs in 19.1 overs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning, clears 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of government. Defence Ministry inks 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Belgian-born scientist Francis Halson wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. That is all in the news at 9. Good night.
13: ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ರಾಯಚೂರು ಎಫ್ಎಂ ಕೇಂದ್ರ. ಸಮಯ 9:15:11. ಕಂಪನಾಂಕ 102.1 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು.
14: ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಕಲಿಕೆ.